तुझ पे फिदा हो मेरी जान, लज्जत जिक्र से तेरे राहत दो जहां मिली, लज्जत जिक्र से तेरे राहत दो जहां मिली। जो भी फिदा है दोस्तों खालिक़े कायनात पर, उसकी खिज़ा में भी मुझे खुशबूए

नफ्स दुश्मन है, दुश्मन को नाशाद कर। अल्बो जां को तो उस दर पे अब्बाद कर, और सुकून दिलो जां को खल्लाद कर। अल्बो जां को तो उस दर पे अब्बाद।

मजाल है कुछ भी कर सकूं मैं जो तू न तौफीक ऐ खुदा दे। मजाल है कुछ भी कर सकूं मैं जो तू न तौफीक ऐ खुदा दे। तेरी मशीयत है सब पे ग़ालिब ये है चहें सब मेरे इरादे। तेरी मशीयत है सब पे ग़ालिब ये है चहें सब मेरे इरादे। बहुत दिनों रह चुका निकम्मा बस अब

गुल है बस एक अगर हूं तो खार में हूं तेरे गुलिस्तान में, सब गुल है बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शिआर में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शिआर में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर बस अब

दे, मजाल है कुछ भी कर सकूं मैं जो तू न तौफीक ऐ खुदा दे, तेरी मशीयत है सब पे गालिब ये हेच हैं सब मेरे इरादे, मजाल

तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। मुझे भी कुछ

मजाल है कुछ भी कर सकूं मैं जो तू न तौफीक ऐ खुदा दे। मजाल है कुछ भी कर सकूं मैं जो तू न तौफीक ऐ खुदा दे। तेरी मशीयत है सब पे गालिब यह चहें सब मेरे इरादे। बहुत दिनों रह चुका निकम्मा बस।

तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं।

तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूं।